एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंसा।

0: रेडियो आदि खोलेर चाहिँ के हो?
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।

0: सुनिए सुना अहिले हाम्रो गर्नेमा 11 बजेको छ।
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4
3: नमस्ते महोत्सवर के आफ्नै गायक तिलक बमल्ल तपाईं यति बेला
0: 11 बजेको छ।
1: यस समयको साथमा जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पम्प सँगै जोडिएको डिपार्टमेन्ट स्टोर्सको 5 घर अगाडि जैसी 15 तर्फ जाने बाटोमा कुनाको साइडमा

नमस्कार नमस्कार नमस्कार ने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते सौ शासमा सांगतिक अभिवादन तथा कार्यक्रम गांधी से क्या भाग्य के सुंदर चौधारी बात

हजुर, कार्यक्रम को क्रम में राखी को यह छोटो व्यापारिक विश्राम संगे फिलहाल स्वागत कार्यक्रम का विस्तृत भाग में यहाँ साझ हम कार्यक्रम का विस्तृत भाग का बुधवार व्यवसाय में छो बुधवार व्यवसाय में रहे तपहर समक्ष सुमधुर खाल का भाका कार्यक्रम में जोड़े अगाड़ी बढ़ने चमर्क में जुटी रहता ये बेला को क्रम में हमी अर्क भाका जोड़ सोही भाका संगे हमी पुनः उपस्थित होने नहीं हमी संगे रहन्हला।

0: सुनिए ना, आइए हम लोग अनिमा दिल्ली बजे कच्चा
1: इस समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो मा कुना को साइड मा
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गर गहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।

भरी सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटा कन्फ्युजन गेट द सोलुसन इट्स अ कुल धुली डट कम गेट द सोलुसन इट्स अ कुल धुली डट कम